0: फिर अनु तुनाई दशमा पहा अनु तुनाई दशमा हाथा लखांडे रेडियो आईटीएन सेबे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव पेरोरे कोलहाई
2: विलाव ओपवित किन्ह आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोट याते एनएल बी धन निधान ये लुप्राईये प्रति संवर्धने तक तेलंत शक्तियक्तिमिन उबाद दिन वार्ता तिन वटे धन निधान